जी हो गए ने ते सेवा करन लग पे, दिन रात सेवा कर दे ने। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन, अते माता पानी जी इशनान करा रहे सन। चौंकी दा पावा टुट गया,

सुख छड के जंगलों में फिरना ते कंडियां ते सौना पेगा। अगर इन्नी कुर्बानी कर सकते हो ता ए जोत तुहाडे कोल रहेगी। क्या पिता जी सब कुछ कुर्बान करांगे पर ए सेवा साध संगत दी ए साडे कोल रहे। ता गुरु साहिबां ने वर दिता ते नाले कहा तेरे पति रामदास दी उम्र भी बहुत घट है, असी अपनी बाकी दी उम्र भी तेरे पति रामदास नूं दे के गुरगद्दी ते बिठावांगे। वो समा आया, गुरु अमरदास पातशाह दे दो जवाई सन, एक गुरु रामदास जी ते एक दूसरे। पहला प्रीख्या लई कहा कि थड़ा बनाओ, थड़े बनाए, गुरु साहिबां ने कहा ठीक नहीं ढा दियो, फिर ढा दिते, फिर

दस पातशाह गुरगद्दी ते बैठे गुरु अमरदास दे वेले ही गुरु रामदास पातशाह ने जिथे अज अमृतसर शहर वसिया होया है ए जगह खरीद के इथे गुरु अमरदास पातशाह दे कहण ते गुरु रामदास महाराज दे नां ते इस दा नाम रखिया गया अते हौली हौली बदल के इहदा नाम अमृतसर कर दिता गया। गुरु रामदास पातशाह दे ग्रह तीन सपुत्रा ने जन्म लिया, वड्डे पृथ्वी चंद, छोटे महादेव अते उन्हां तों छोटे गुरु अर्जन देव पातशाह। पर तिन्हां पुत्रां दे सुभा बड़े अलग सन। वड्डे पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा मायावल माया वाला सुभा, उन्हां तों छोटे महादेव उन्हां नूं दुनिया दे नाल कोई सरोकार जिवें नहीं। अते तीसरे गुरु अर्जन साहब जिन्हां दे मन विच सेवा भाव अते परमेश्वर दे चरणां दा प्यार हर वक्त गुरु रामदास पातशाह दे कोल बैठे रहना, इस वास्ते मैं दूर होवां। पिता गुरु रामदास नूं की पता है कदू लोड़ पै जाए ओ आवाज मारन, मैं दूर होवांगा। कोल इस करके रहिंदे सन कि पिता नूं इंतजार ना करनी पवे, जदू हुक्म करन मैं उदू सेवा कमा लवां। ओ गुरु रामदास जिन्हां ने ओ नगरी संसार नूं दित्ती कि जिस जगह अज भी जे कोई इंसान मन करके इशनान करदा है, गुरु रामदास दी वसाई नगरी अमृतसर सरोवर विच, तां अपने आप ओदे मूंह तों

भगती ते शक्ति दा सोमा समझ के दुनिया दे लोकां ने कई वारी बर्बाद करना चाहिया, पर जिन्ना ने बर्बाद करन दी कोशिश कीती समय दे नाल ओ आप ही बर्बाद हो गए। अहमद शाह अब्दाली उन्हें भी जदू देखिया कि सिखां दी शक्ति बड़ी वध गई, एक दिन इन्हां दा राज हो जाएगा, इस वास्ते सिखां नूं खत्म करन दी बड़ी कोशिश कीती पर पेश ना गई। ता पता लगा कि हरमंदर साहब सरोवर विच इशनान करके ए सिख फिर नवे नरोए हो जांदे ने, शक्ति लैंदे ने। ता अहमद शाह अब्दाली ने सरोवर भरवा दिता, बड़ा कुछ कीता, इथों तक कि मस्सा रंगड़ दरबार साहब दे अंदर बैठ के हुक्का पीण लग पिया ते कंजरियां नचाण लग पिया। जदों सिखां नूं पता लगा ते खून खौल उठिया।

जे तुहाडा हरमंदर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिनू ए पता लगे कि साडा हरमंदर कैद है, असी हरमंदर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरमंदर साहब नू आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखा ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपने जवाना दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखा नू जान प्यारी नहीं, अपना हरमंदर प्यारा है। अपनिया जाना वारिया अते बाबा दीप सिंह दा जदू सिर तू सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हरमंदर नू आजाद कराया। क्यों के बाबा दीप सिंह जी जानते ने ये गुरु रामदास की नगरी, गुरु रामदास ने वसाई, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे कुछ चिर ता खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हरमंदर नू बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकता है, पर ये ता गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा

नाम इते नानक आने दी धरती है। एक कृपा करी किसे चीज दी इच्छा होवे करो ना नहीं पिता कोला ना मंगी जे किसे नु लोड़वंद तेरे कोल कोई आ जाए तेरे कोल कोई सवाली आ जाए ते इस तरह करया कर एक पत्थर दी ठीकरी ते घड़े दी ठीकरी ते बस अपना नाम लिख के मेरे कोल भेज दई जेड़ा भी सवाली ठीकरी लेके आएगा ओदे ते तेरा नाम लिखा होएगा।

मैं ता काची दे मानुख अभिमानी इस कची दे दे हंकार च मता होया गलतियां करदा चला जा स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरस मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भजन जग जीवन हर राया मेरे वाहिगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है वो आत्मक जीवन भी बख सकते सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कादे लई कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया सी किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है किहड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया पावन तरन तारन चिंता मर एक निमुख न ए मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहब जी असी तां एडे वड्डे गुनाहगार हां जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी पाओ भगतनी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना की इन्हें अकिरत कहन कि जिसने जिंदगी श्वास खान पान भोजन पहरान सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा है लोगों के धन वाल वेखते हैं लोगों के शरीर वाल वेखते हैं पर धन पर धन पर ती निंदा बुराइयां भी लोगों दी वेखियां ने अपनी नजर नहीं आई लोगों की निंदा करते रह गए ते अपनियां नेकियां दी फड़ा मारते रह गए अपनियां बुराइयां वल ध्यान ना किया पर अपवाद ना छूटे लोगों नाल झगड़े करते आ रहे आवा कौन होत है खुन खुन ए प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़ मुड़ के जमना मरना बनिया होया आना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब की गल करते ने उथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर ते मेथों एक पल भी जुड़िया नहीं जा मन करके मेरा उथे फेरा नहीं पै लगता टिकया नहीं जाता मैं लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोहंकार आदिक ते इन्हां दे मारे हुए जिहड़े बुरे लोग ने तिन संग सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नित्ता बणिया काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे मोह माही जिंदगी विच कट्ठा मैं की कीता काम कट्ठा कर ले क्रोध कट्ठा कर ले माया कट्ठी कर ले हंकार कट्ठा कर लिया दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही ए नेकी दे काम जिहड़े सुपने विच भी नहीं पए आउंदे उन तां मैं जीवन च की कर ले नेकी ते भलाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तो साडा शीशा बनाउण लगियां कमाल करती साहब कहंदे ने चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किस मेर उपावो डुबदे पत्थर तारे समुंदर सागर जिन्ना कु पानी नाल भरिया ए तो भी बहुते अवगुण ने साडे कदे कदे ध्यान मारदे रहिए बहुत फर्क पै सकदा साहब पंचम पातशाह कोल पिशावर की साख काबल की संगत आई सी सूबा सरहद की संगत आई सी एक सिख ने उठ के बेनती की साहब जी गलतियां बड़ियां गुनाह बड़े हो जाते साहब कहन लगे फिर की होया कहन लगे महाराज किवें बख्शे जावांगे साहब कहन लगे इस तरह करो जदों अगले साल आओगे ना पूरे साल का हिसाब करके लिया है जेड़ी गलती ते गुनाह हो उहदा भी हिसाब कर लेना लिखी जाना नाल नाल जेड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो भी लिखी जा चले गए साल बाद आ गए महाराज ने पूछिया याद कराया क्यों भाई गुरमुखो तुसा एक सवाल किया तुहानूं कहा सी कि अपनियां वहीयां बनाओ खाते बनाओ बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ खाते बनाए ने कि महाराज बनाए दसन लियाओ फिर विखाओ कि महाराज लियांदे कोई नहीं क्यों नहीं लियांदे कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया कमाल है भाई तुहानूं लिखण नूं कहा सी तुसा वहीयां ते खाते बनाए लिखिया क्यों नहीं कि महाराज गल ए है कि जिसने गुनाह किया लिखन लगे ते सोचिया भी उथे महाराज की हजूरी च संगत च पढ़ के सुना पेगा नंगे हो जावा शर्म आ गई लिखन तो शर्म आ गई नहीं लिखिया महाराज कहन लगे फिर पुन कर्म भी कोई नहीं किया पाप कर्म तो लिखन लगिया शर्म आ गई कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई कि जे तां करांगे ते लिखने पैणगे महाराज का हुक्म है जे लिखांगे ते सुनाउणे पैणगे नंगे हो जावा इस करके पाप कर्मा तो बचते ही चले गए होए ही नहीं तकरीबन तकरीबन बचे ही रहे हैं साल पर महाराज कहने लगे जे पाप कर्म नहीं किए फिर पुन कर्मा का की हाल रहा
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਜੇ ਲਿਖੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੋ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਨਾਲੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਲੁਪਤ ਹੈ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਆਂਦਾ ਸਲਾਇਆ ਹਰ ਕਮ ਚਿਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਪੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

नामदान स्नान दड़ाए नामदान स्नान दड़ाए मिठा बोलन निवचलन हथों देके भला मनाए हथों देके भला मनाए थोड़ा सवना खावना

मत्से रंगड़ तक पहुंचन दी स्कीम कर ली। एक पुरानी थे तो ठीकरियां इकट्ठियां कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे नूं सुट चौधरी जट्टां वाला भेस बना लिया। तलवारां चोलियां दे हेठ लुका लिया ते हरमंदर साहिब वल नूं तुर पए। दोनों शेर दर्शनी ड्योड़ी जा पुजे। बूहे दे सज्जे हथ लगदी बेरी नाल सिंघां ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी नूं मोढ़िआं दे चुक लिया। पहरेदारां ने सोचिआ कि किसे पिंड दे नंबरदार मामला उतारन वास्ते आए होणगे, सो किसे ने भी उहनां नूं रोकिआ नहीं। भादों दी दुपहर होण करके उस वक्त जोर दी नेरी वग रही सी। सिंघां ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा कीता, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघां दा वार खाली ना जावे। की वेखदे हन कि हंकारी मस्सा पलंग ते बैठा हुक्का पी रहा है, कंजरी नचदी पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघदे ही बोरी नूं पलंग दे थले सुट दिता। जो ही मस्से ने बोरी नूं वेखण वास्ते अपना सिर हेठां झुकाया तां भाई महताब सिंह ने तलवार दे इक्को वार नाल ही मस्से रंगड़ दा सिर वगा के हे ओ

गुड़ नहीं क्योंकि संत के संग नहीं किस घाल, जदों साध के संग नहीं किस काल, दर्शन पेटत होत निहाल। महापुरखां दे सत संगत दे दर्शन करके भी पापां दी मैल कटी जांदी है, मन जुड़ जांदा गुरु दे चरणां विच। जिस तरह आख्या तिना देख मन चाओ उठंदा, जुड़िया होया दे दर्शन करके मन अपना भी गुरु चरणा विच जुड़ जांदा है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, साध कै संग नहीं किस काल, तेनू बहुतियां कालना नहीं कालनियां पैणगियां, संगत दे दर्शन करके भी तू निहाल हो जाएगा। दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इयां उआं सुहेला, साध संग बिछरत हर ने। ए लोक भी सुखी हुंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है। असी निरंकार दे चरणां तो बिछड़े होए हां, ते जपन वालियां दी संगत जदों मिल जावे तां साडा मन जुड़ जांदा है। भाव विछड़िया होया गुरु दे चरणां नूं मिल पैंदा है। साध संगत बोलो श्री, ते फिर जो इच्छा सोई फल पावे। जिसने भी फिर भाई निरंकार दी सच्ची दरगाह विचों मंगया, फिर उसकी भावना पूरी हुई है। वो कदे इस दर तो खाली नहीं मुरिया। अनेकां मिसालां हन, कोट अपराधी संत संग उधरे, करोड़ां अपराधियां दा उधार हो गया सत संगत विच आके। ते फिर जेड़ी वस्तु किसे ने मंगी, ओ दात ही नहीं मिली, दातां एडियां मिल गईयां के सबे थोक प्राप्ते, थोक दातां मिल गईयां, अगों वंडन वाले बन गए। उचारण

ए गुरु दी वड्याई चली आ रही, जिस नूं के पट्टा ने भी बाणी दे विच फरमान कीता है के बसंत दी ऋतु दे विच जो खिड़े हुए फुल हन सारे संसार दे विच और समुंदर दे विच चल रहियां जो लहरां हन इन्हां नूं कोई गिण नहीं सकता। फिर भी जे कोई शिवजी दी तरह ध्यान करके बैठ जावे ते गुरु पासों बख्शां प्राप्त कर लवे ते इन्हां पैंदियां होईयां बारशां दियां बूंदां दी गिणती कर भी लवे, संसार दे विच जितने भी फुल हन उन्हां दी भी गिणती कर लवे ते समुंदर दे विच चल रहियां लहरां दी भी गिणती कर लवे, मगर जो गुरु दे गुण हन उन्हां गुणां दी गिणती करनी असंभव है। पट भी फरमान करते हैं।

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है।

जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साहिब फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साहिब फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।